कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे राम, हरे कृष्ण